अक्षर आद अनिर अनाहत सत सदैव तुही करतारा जीव जिते जल में थल में सब के पेट को सद पोखण हारा वेद पुराण कुरान दोहू मिल भांत अनेक विचार विचारा और जहान निदान कछ नह ऐ सुबहान तुही सिर तारा हर की वडियाई हो आख ना साकं हो मूर्ख मुगदनी चान जन नानक को हर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पिया अजान

तीर्थ अर्थ सच संतोख, गुरु तीर्थ गुरु को आएगा तेनू नाम देगा, तेरे अंदर सत होएगा, तेरे अंदर संतोख होएगा, दया धर्म तेरे अंदर दया होएगी, तू किसी जिया उन्होंने बलि दियो मार दियो आत्मदनी, तू किसी जीते दया करने वाला होएगा। श्री गुरु चरण, इसे करके गुरु चरणा दे निमित तुल ना सगर है, ये तीर्थ जेडे उन्होंने थापे हुए ने, ये पास तू भी नहीं पुछदे कि गुरु को आएगा। गुर सागर हो, गुरु एक सागर है, लेकिन दुनिया वाला सागर नहीं, हालांकि ये सागर भाई अंत नहीं पा सके, लेकिन गुरु सागर का कोई अंत नहीं पा सकता। गुरु सागर को आएगा, गुर सागर हो रतनागर, तेनू एहो जे रतन मिलने, तित रतन कनेरे राम। भाई गुरदास जी ने फरमाया है, सतगुरु पूरा सा है, त्रिभवन जग तिसदा वणजारा, कि आ गुरु नानक साहब महाराज साहब पूर्ण शाह ने इन्हां दी हट्टी दे उत्ते तीन भवनां दे लोक ने आके व्यापार करन ते मुकदा नहीं। रतन पदार्थ बेसुमार, भाव भगत दे भरे भंडारा, गुरसागर रतनागर, रतन कनेरे राम। रतन संपदार्थ बेशुमार, भाव भगत दे भगत भंडारा, तेनू गुरु तीर्थ तो गरीब भी होवे उहदे कोले कौडियां ना होण, उह दुनिया दे कौडियां ने, कहिंदे सिर एक प्रेम नाल आखी वाहे गुरु तू प्रेम नाल आई ते तेनू भर देंगा। रतन

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

नमः, सतगुराय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पामो, कल कलेश तन माहे मिटामो, सिमराओ जास विसंबर एक है।

मैं छोरा जे को जन्म मरण दे डरा साध जना की सरणी भरा जिजन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संग जागा मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सऊ गनिया सब ते ऊंचा जागा मन में सगल की रीना हर हर नाम दिन घट घट जीना मन अपने ते बुरा मिटाना पिखा सगल सृष्ट साजना सुख दुख जम सम दृष्टि ता।

आपे आपन संग आप राते तुम रि उस तुम ते हो हे नानक वरना जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हको नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उतम क्रिया सा संग दुर्मत मलहरिया सगल उद्दम में उद्दम पला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जासुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जे कटवस हर नाम सलोक निर्गुण यार ए आने आ सो ब्रह्म सदा समाल जिन किया तिस चीत रख नानक बिहीनाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी गमन मूल ते गम दृष्टानी जिन तू साज सवार सिंगारिया गर्भ अग्न में जने उभारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध भार जोबन भोजन सुख सूद बिरध भयाउ पर साख सैन मुख पियाउ बैठ कौ धैन यह निर्गुण गुण कछु न बुझे बख्श लियो तो नानक सिजाय जय प्रसाद धार पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संहसाय जय प्रसाद बीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमला जय प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संसाद बसा दीने हस्त पाम करन नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मन अंध व्यापे नान काढ़ लियो प्रभ आपे आदंत जो राखन हार तिस्यों प्रीत न करा गवार जाकी सेवा नमृत पावे तास्यो मूढ़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर स सदा हजूरे।

अष्टपदी दस वस्तुले पाछे पावे एक वस्त्रकार मिखोट गवावे एक पीना दे दस भी हरले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से नाही जा रहा तागो की जय साध नमस्कार जाके मन लागा ब्र मीठा सर्व सुखता हूं मन उठा जिसने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत साप नि दे रास खात पीत भरते अंत उलास अपनी अमान कश बौर शाले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीता भी खोवे बौर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा मन माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सरपुर होवत जान अनेत बिरकी छाया सुरंग लावे बिन से मन पछतावे जो दिसे सो चालन हाल लपटरो दे अंध अंधार बटाऊ से जो लावे ने तागु हाथ न आवे केहे मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा दान का बलय लाई मिथ्या धन धन गुटम सबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राजो बन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती आसो बस्तरा मिथ्या रंग संग माया बेगस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या सुपर कर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीवा हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुनहे मिथ्या स्पर दर्भ को हिरे मिथ्या नेत्र पेखद पार्थ्र रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार गोता मिथ्या मन पर लोभ लुभा मिथ्या तन नहीं पार उपकारा मिथ्या बास लेद बेकारा बिन बुझे मिथ्या सब सफल दे ना

साधु के संग में प्रीत, साधु संग किसी नहीं बैर, साधु संग ना बिंगा पैर, साधु संग ना ही को मंदा, साधु संग जाने परमानंदा, साधु संग ना ही हो ताप, साधु संग तजे सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई, साधु संग ना कब हूं तावे, साधु संग सदा सुख भावे, साधु संग बस अगोचर लह, साधु कै संग आ जारो सहाय, साधु संग बसै थान उचे, साधु कै संग महल पहुचाए, साधु कै संग दृढ़ सब धर्म, साधु कै संग केवल पार ब्रह्म, साधु संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साधु संग सब गुल उतारे, साधु संग साजन मीत कुटम निस्तार, साधु कै संग सो धन पावे, जस्तंते सब को बरसावे, साधु संग धर्म राय करे सेवा, साधु संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप लायन, साधु संग अमृत गुण गायन, साधु संग सर्वधान गम, नानक साधु संग सफल जनम, साधु संग नहीं कशकाल, दर्शन भेट तो होत निहाल, साधु संग कलुक तर, साधु संग नरक परहर, साधु संग इहां उहां सुवेला, साधु संग बिछड़त मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साधु संग ना बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रुद वस, नानक उदरै साधु सुन रस, साधु संग सुनो हर नाउ, साधु संग हर के गुण गाओ, साधु संग ना मनते बिसराय, साधु संग सर पर निस्तराय, साधु संग लगे ब्रह्म मीठा, साधु कै संग घटघट डीठा, साधु संग भया गया गारी, साधु संग अंध भई हमारी, साधु संग मिटे सब रोग, नानक साध मिटे संजोग, साधु की महिमा वेदना जाने, जेता सुने तेता बखियाने, साधु की उपमा ते गुण ते दूर, साधु की उपमा रही भरपूर, साधु की शोभा का नाही अंत, साधु की शोभा सदा बेअंत, साधु की शोभा उचते उची, साधु की शोभा मुझते मुची, साधु की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई सलोक, मन साचा मुख साचा सोहे, अवरना पेखा एक सबिन कोहे, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को सोख।

जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवा को किसते डराए, जैसा सत ऐसा दृष्ट आया अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तसा पूजा, जब देखो तब सब कुछ मूल। नानक सो सुखम सोई असूल, नह के जन्मे नह किश मरे आपन चलते आप ही करे। आमन जामन दृष्टान दृष्टा क्या कारी धारी सब सृष्ट, आपे आप सकल में आप अनक जुगत राज थाप थाप विनाशी नाय किश खंड। धारण धार्यो ब्रह्मंड अलख वे पुरख प्रताप आप जपाए था। नानक जाप जन पर बजाता सो सोभा वन सकल संसार धरे धन मंत। प्रभु के सग सेवक सगल उदार, प्रभु के सेवक दुख भी सार ना पे मेल लय कृपाल। मुर्खा शब्द जब पै निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनो कृपा करे बट भागा। नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पर कहू उत्तम करमान। जो कुछ करा सो प्रभु कै रंग सदा दसा सदा बसे हर संग सह सुभा हो वह सो होए करने हार पछाणे सोए। प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सत ऐसा दृष्टाना से उपजे समाहे समाये हुए सुख निदान ओनु मरे आए। आवस को आप दिनो मां नानक प्रभु जन एक हो जान श्लोक। सर्व कला भरपूर प्रभ बिरसा जानन हार, जागे सिमरन उदरिया नानक दस बलिहार। अष्टपति टूटी गांडन हार गोपाल, सर्व जिया पे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरता कोई ना हेरे। मन मेरे सदा हर जाप विनाशी प्रभु आपे आप। अपन किया कशु ना होए जैसो प्राणी लोचा गोए तिस बिन नाही तेरा किश काम। गत नानक जब एक हर नाम रूबन तोय नाही मोह प्रभु की जोत। सगल घट सो है तलवंता क्या गो करबै जा सब कुछ तिसका दिया। दरबै तसूरा जय गौ कहावै प्रभु की कला बिना कहता वै। जे को होए बहे दाता अर्थ देन हार जाने गा बार। जिस गुरु प्रसाद उठे हाँ रोग नानक सोजन सदा अरोग। जो मंत्र को थामे थमन त्यों गुरु का शब्द मने स्थमन। जो पा खाणना चढ़ तर प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरा। जो अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन हुए विगास। जो माँ ध्यान में मार्ग भावत साधु संग में ज्योत प्रगटावे तन संतन की वाछो तूर। नानक की हर रोचा पूर मन मूर्ख का बिल लाइये प्रभु लिखेगा लिखिया पाइये। दुख सुख प्रभु देवन हार वर त्याग तो तसे चितार। जोगज करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान। कौन बस ताई तेरा संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जब हृदय माहे नानक पात सेती कर जाहे। जिस फिकर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया। ता जब मान लियो मन मोल राम नाम हृदय मैं तोल। लाद के संते संग चाल व्रत याग विखिया जंजाल। तन तन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगे सोए। बा पार बिरला बा पारे नानक ताके सद बलहारे। चरण साध के तोए तोए प्योर प्रसाद को अपना जियो। साध की धूर करो स्नान साध पर जाइये कुर्बान। सा सेवा बट भागी पाइये सा संग हर कीर्तन गाइये। अनक बिगनते साधु राखे हर गुण गाये अमृत रचख है। ओट गही संते इंद्र आया सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक हो जी बालन हार उखे को देवत आधार। सर्व निधान जाकी दृष्टि बाहे प्रभु लिखे का लेना बाहे। सब की तिसगा करने जोग तस्बिन दूसर हुआ ना हो। जब जन सदा सदा दिन रैणी सब ते उच निर्मल ये करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया। जाके मन गुरु की प्रतीत जन आवे हर प्रभु चीत। भगत भगत सुनिए ते लोए जाके हृदय एक होए। सच करनी सच ताकी रहत सच हृदय सदमु कहत। साची दृढ़ साचा आकार सच वर्ते साचा पासार। पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक। रूपना रेखना रंग केश त्रिगुण दे प्रभिन्न तिसे बुझाए नानका जसोवै सुप्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी पर मन में राख मानु की तू प्रीत त्याग। तिसे पर ना ही किश गोय सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद। सा तेरे की चरणी पाओ नानक मन एहन राव। मनसा पूर्ण सरना जोग जोगर पाया सोई होग। हरन भरन जागा नेत्र भोर तिसका मंत्र ना जाने होर। अंध्रु मंगल सत जाके सर्व थोक सुनिए घर। ताके राज में राज योग में जोगी तब मैं तबीसर ग्रस्त में भोगी। त्याय त्याय भगतें सुख पाया नानक तिसुर का करे अंतरा पाया। जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अब गाहे। पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपना सूत। समत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम ध्यावे से।
ਤੇ ਗੁਰਮੈ ਜਾ ਕੋ ਭਰਮਾਏ ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੇ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਭੇਕਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਿਨੋ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸੀ ਇੱਕ ਅਕਾਰ ਨਾਨਾ ਜਲਦ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਹੇ ਨਾਨਾ ਬਿਦਗਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਵੇ ਭਾਈ ਸਭ ਗੜ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੇ ਨਾਨ ਖਰ ਨਾਉ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਨਾ

निर्मल मंद एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस धन कहो चार गुण उठता वे सो तन हर सेवा ते पावे। जिसको नित बांचे मीत सो सुख साधु संग परी। जिस शोभा को करे भली करनी सा सो बाबा हर की सरणी। अनुग बावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अवखत लाए। सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगे परवान। मन पर बोधो हर कह राय दाय दस्तावते आवा ठाए। तागो बिघन ना लागे कोय जागे हृदय बसे हर सोए। कल ताती ठांडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ। भविन से पूर्ण है आस भगत पाए आत्म बरगास। तितकर जाए बसे बिनासी कहो नान काटी जम्फासी। तद विचार कहे जन साचा जन्म मर सो काचो काचा। आवागमन मिटे प्रभ से बाब त्याग शरण गुरुदेव। एवं रतन जन्म गाओ एहुदार। हर हर सिमर प्राण आधार अनुग पावना छूटन हारे। सिमरत सास्त वेद विचारे। हर की भगत करो मन लाए मन मन छत नानक फल पाए। संग ना चाल तेरे तरह तू क्या लपटावे मूर्ख मना। सुदमित कुटम अर बन तंते कहाओ तुम कमन सनाथा। राज रंग माया विस्तार अंते कहाओ कमन छुटकार। असस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पा सारी। जिंदी तुस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना। गुर की मा तू ले आने भगत बिना बो डूबे ज्याने। हर की भगत गुरु मन मीत निर्मल हुए तुम्हारो चीत चरण।

सर्व्यापी राम संग रचन जन जाता तस्किये राहत सदभजन साधु सब कहत जो जो वय सोई सुख माने करन ग्राम नहार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर भी यो ही नानक दर्शन देख सा मोही आप सत किया सब साथ तिस प्रभ ते सगल उत्पात तिस भावता करे विस्तार तिस भावता एक अंकार अनकला लखी न जाए जिस भाव तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आप भरपूर अंतर गात जिसाप जनाए नान जना बुझाए सरभूता बरतारा सर्वनैना पेखण हारा सगल समग्री जाका तना आप जस आप ही सुना आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी गिनी माया सबके मत अलप तो रहा है जो किस कहना सो आपे कहा आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे तलय समाए इसते हुए सोना ही बुरा उरे कहो कने कश करा आप ला कर दूता तने की आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब स्वाज ओत बोता आपन संकराज ताकि गतमिंद कहीं ना जाए दूसरे ता सोजी पाए।

भाव अष्टपदी पूरे गुरुका सुनोपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतराय चिंद आसन त्यागो तरंग संजना की तू मन मंग आप छोड़ बेनती करो सद सासंग अग्न सागर तरो हर धन के पर लिहो भंडार नानक पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लख वार चुपै चुप न होवै जे लाय रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पहर सहस सियाणपा लख होहे ताहिक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है

मन कोय, मन मार्ग ठाग न पाए, मन पास्यों परगट जाए, मन माग न चाले पंथ, मन धर्म से तीसन बंध,

अहंकार, असंख्य जाप, असंख्य पाओ, असंख्य पूजा, असंख्य तप ताओ, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रहै उदास, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती, असंख्य दातार, असंख्य सूर

दिखाए। आपे जाने आपे दे आखे से पेके ही के जिसनो बख्शे सिफत साला नानक पात साही पात साहु अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारी है अमूल पंडहर अमूल आव है अमूल लै जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल धीमान अमूल तुल अमूल परवान अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फरमान अमूलो अमूल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे वख्यान आखे ब्रह्म आखे इंद आखे गोपी तय गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख न सक है के ही के

भंडार। जो किछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सृजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश। आदि अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। एक दूजी बा

ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड़े आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़ी है बहुत अनूप।

वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पात साही दसवीं छपे शांत वह प्रसाद। चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नह जेह रूप रंगर रेख भेख को कह न सकत के। अचल मूर्त अनुभव प्रकाश मतोज कहिजे। कोड इंद्र इंद्रान साहे सहान गनिजे। तिर भवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रिन कहत। तवै सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। भजंग प्रयात छंद

काम निर्पहन काम आत्मदुत प्रचान मित गते अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रनाडय अंडड बाडय चाचरी शांत वय प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे पारे हरि अंकर अंग नामे कामे प्रजंग प्रया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे

है पवित्राय परथि से अदि से अदृ से अग्रि से भगवती शांत वय प्रसाद कहते के अछे जो देश है के अभिज भेस है के अगंज करमे के अभज परमे के अभिज लोक के अदित सोक के अवतूत वर्ण है के विभूत करण के राजन प्रभा है के धर्मं तुझा है के अशोक वर्ण के सर्वा भरने के जगतं कृति है के शतरंग क्षत्रि है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपो अनुपै

प्रसाद करुणालय है, अर्कालय है, खल खंडन है, मह मंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्वे उबारण है, तृत के तरण है, जग के कर्ण है, मन मान्य है, जग जान्य है,

एक रत्ती के मातिम तंग जरे जर संग अनुपयु तंग सुरंग सुवारे कोड़ तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन कौ जात निवारे पारी पजान के पुह पली बिद न्यावत सीह न जात बिचारे ते पहे तो कहा पहे पुह तंत को नांग ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नंगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर ही सत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूत कौन गने नहीं जात विचारे श्री पात श्री भगवान भरे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक बसेखे वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सुबान के पेखे

चाओ पाई। संबद सतरह सहस पनिजय अर्ध सहस फुण तीन कहिजय। भाद्रव सुदी अष्टमी रववार तीर तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

सुनाय पवित होए से जना जनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरुमुख जनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवित संगत सबाइया

चित लाए कहे नान गुर प्रसादी सहज उपजाय इह सहसा जाय जियह मैले बारहो निर्मल जियह ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया।

पाए जग दिखाया। गुर प्रसादी बुझया ता चलत हुआ, चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचया, जोत राखी ता तू जग में आया। मान चाओ भया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी गृह बंदर बनया। हर गाओ मंगल नित सखी, ये सोग दुख ना व्यापे। गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना पिर जापे।

जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन नाम साया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक केहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर सिंह जित लाया।

देखा किता पड़तर कच्ची पक्की सारी है, जो ऐसा चाची सबको आई वादी है, जिसके जी पुराना

आया मैं मैल हैगी सी मेरे अंदर, और सतगुरु साहब जी ने अठवें जामे दे विच बाला प्रीतम धन श्री गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह उन्होंने हर जामे च एक वक्री बख्शिश हुई है। ते बाला प्रीतम दे जामे दे विच एक न्यारी बख्शिश हुई है। उन्हां दी शरण में चोर आया, उन्हां दी शरण में कुड़ी मार कातल आया, उन्हां दी शरण में नचण वाले आए, उन्हां दी शरण में तंबाकू पीण वाले आए आ, चोर आए आ, उन्हां सारिआं दे पार उतारा कर दिता जिन्ने भी बाला प्रीतम शरण च आए आ, पर एक नाल सिद्धांत भी बख्शे। 1658 दे विच औरंगजेब अपने बाप नूं कैद करके दिल्ली दे सिंघासन ते बादशाही तिलक लवा के बैठा। जजन उह बादशाही तख्त ते बैठा, उस दिन मुजद्दद सानी दे सरबराह दे पुत्तर नूं नाल बैठा वेख के सूफी फकीरां ने तिशियां ने यह समझ लिया कि साड़ी खैर नहीं है। 1661 विच बाला प्रीतम इलाही सिंघासन ते आ गए, और यह गल सूफियां दी सच्ची होगी जदों औरंगजेब ने बेकसूर सरमद फकीर ते इल्जाम ला के कतल कर दिता। हुण जिहड़े अपने आप नूं साध अखवांदे सी, जिहड़े बख्त मुहम्मद नूर शाह वर्गे, गुजरात का दौले शाह फकीर, इन्हां कहे वी साडी खैर नहीं, हुण असीं किथे जाईए। इन्हां तिन्हां ने सलाह कीती भी हुण आपां नूं जे बचा सकदा है ना ते ओ गुरु नानक दा घर। इन्हां कहा

सुमित्र बिचोले जय मिलकंत बिछाड़ा सुख टल गुरु सेविया अहन सु सहज सुपाय दर्शन परस्या गुरु के

हृदय का आधार रहो। काम क्रोध हमार मते व्यापार संसार ओ संत सरनी लाग चरनी मिटे दुख अंधार। सात सो दया कमावे ए करनी सार आप छोड़ सब होए रेना जे दे सब प्रभ निरंकार। जो दिसे सो सगल तू है

मन अदान मध्य सो सेवक नाही तसमदर्शी संतो कोई कोट बंदाही गहन कहान यह कीर्त करला कथन कहन ते मुक्ता गुरम कोई विरला गत अवक

पाए कह दे जल मगन मरत नह मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमंत रवरिया बख्शे भगत भंडाराओ दे मन जल पीत कर जैसी मछली नीर जीव दिखाओ तू सुख नो माता सा शरीर मंजा करी ना जीवी प्रभ जान या पीरो दे मन ऐसी अज प्रीत करो जैसी चातरख मेहे साबा तल हरियावले।

और माँ सदरंगावले नहारा भोग ते चले स्वेत जामनो सागर डोर डलाई बाट मोटा भूचिए कर में बस भाई मन मोह में कर्म से मुरमा बल्ले पाए साकत निर्गुण आरे आय अपना मूल पछान रखद मेंद ना ए तनो अग्नि पास प्राण पवने दवा देरी मस्त सच इंसान बहुता जीवन मंगिए मुना लोड़े कोई सो जीवन तैसा किए जैसे गोरमख बस्या सोए नाम होने क्या कनी जे का हर गोर दर्द ना होए यू सोने से भूलिए सबला निंद्रा होए मुँह सरपन को बस जड़ा अंत हो मैं दोए मोहे बिचारिए सुपना ही जगलो होए अगर मरे जर पाइए।

सच रखिया अवतार पर मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम दान हर मन वसे होमें दुख सब जाए सतगुर शब्द सुनाया मैं सब बलिहारे जाऊं अपने मन चित रहे कहे कहाए गोविंद गुरु आप न जाई हर जियो भगत बचत सुखदाता कर कृपा मन वसाई नानक शोभा सुख दे प्रभु आपे गुरमुख दे वडियाई श्री राग महला तीजा।

ना समाई राव बेन सतगुरु प्रीत नावी नाम लगो पाओ सुमने सुखना पावी दुख में रसोए समाई जे हर हर के जे हे बहुत लुचिए कितना मिटिया जाए।

से मने आए, कर में सच समाइए, जम काल न सके खाए, नामा शिबा कबीर जलाहा, पूरे गुरते गत पाए, ब्रह्म ते बेते शब शाने, ओमे जात गवाई, सोना तन की बाणी गावे, कोई ना मेटे पाई, दैत पुत कर्म तर्म किश संजन पड़े, दूजा पौन जाने, सतगुर पेटिए निर्मल होवा, आंदे नाम खाने, एको पढ़े एको ना बुझे, दूजा और न जाने, कर दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पुलाए, सतगुर सेवे तां गत मित पावे, हजु मन विसाए, सच्ची वाणी सोचत लागे, आवन जान रहाए, पंडर पटवा वाद खाने, बिन गुर परम पुलाए, लख चौरासी फिर पाया, मैं सब दे मुक्त ना पाए, जानो चेते तां गत पाए, जहाँ सतगुर मेल मलाए, सतसंगत मह नाम हर उपजे, जहाँ सतगुर मिले सुभाए, मन तन अर्पी आप गवाई, चलना सतगुर पाए, साध बकलारी गोरे अपने, मिट्टो हर सेती चलाए, सो ब्राह्मण ब्राह्मण सो बिंदे, हर सेती रंग राता, प्रभु निकल बस सबना, कटे अंतर गुरम बिले जाता, नान नाम मिले बढ़ियाई, गुर के सद पचाता, सिरा महला तीजा सहज हूँ सब लोई दी मैंने गौर पाया ना जाए पढ़ा पंडित जोधगी तके पेर की भरम कमलाए गुर बेटे सर पाया अपनी कृपा कर जाए पाई रे गुर बहन सहज न होई सब देही दे सब पुजे हर पाया सहज सोए राहो सहजे गाव या ताए पवे मैं सहजे कदनी बाद सहजे पगत उपजे सहज प्यार बराग सहजे दे सुख पा सांत होए मैं सहजे जीवन बाद सह चलाई सदा सदा हो सह समार लगाई सह जी गुण उचरे पद करे लेवलाए सब दे अरमान वसे रसना हर रस खाई सह जे काल बडारिया सह सुनाई पाए सह जे हर नाम मन वसिया सच्ची कार कमाए से बडबागी जिने पाया सज रे समाए माए वे सह नो पजे माया विजय पाए मान मकान कमाम ने हमें जल जलाए जब मान तो जो

Uno pale pai, nego nam nadane, sachi soji hoi, uno dihilaya, sachi sachi soi, pulasa malasi, after lava hoi, bene sachi, papanta, maya mogabar, sachi soji pai, sachi sapar, abibasimalaina, pure gurvatar, sachi pishani, nipo jodhikar, samaji kaya kadata, jyoti jodh malamhar, pure sabzilai, dekantana parabar, ganagata name. Saya kerja par, andelahar nama lain, kota perai pandaaru, nan tu orang najabi, diye dewan haru, sila mahalat dija, saya umurie beran pawe, janma maran dukhu jai, pule sab sab soji hoi, han nama resmai, man mere, saat gius semua cetalai, nirman nama sarnautno, abse mane ayi rau, hajura ku apni sarnai, jiu rakhe tu rahena, gurke sab jid mare. Gurma pada tarna, bade pahag no paye, mau sausai, amalusya, pahu karta saya tiar semai, ya kun mal mau saudah, pawe bandan bandu paya, lag curasi paper yawe, mirta jamu gawaya, pagta mana nanda, sace sab rang rate, ande nama, gorabe, gawe, saya nirmal, saya je nama semate, gune amat pani bole, sabyatam ramp chani, ya ko seven, ek rate. Gurma ka takhani Satcha sa seviye Gurma basse mani aai Sada rang rati sa siyun Apni kirpa kare malai Ape kare karai ape Ekna sutyaan de jagai Ekna sutyaan de jagai Ape mer malayenda Nan sa samai Si raam halati ja Satcha sevi mani armala Pepe sarin Man nan sada sukupaya Petya gahar ngabir Sachi Sangat Vaisana, Sach Naam Na Manatir, Manre, Sago Sen Sang, Sago Sevi Hare Manvase, Lage Na Mel Patang Rao, Sache Saudapati Upaje, Sache Sacha Nao, Jini Homme Mar Pachaniya, Mutin Balihare Jao, Manmo Sach Na Jani, Tien Thaur Na Kat Hun Thao, Sach Khana, Sach Penana, Sache Hi Vichvasu, Sada Sacha Sarayana, सच्चे सवनवास सब आत्म राम पहचानिया गुरमति निज करवास सच वेखनु सच बोलना तन मन सच्चा होई सच्ची साकी उपदेश सच सच्चे सच्ची सोई जिनी सच्चे बिसारिया से दुखे चले रोई सब जिन नाम सेवियो जे के दया इंतजार जब बंदे मारिए कूक न सुने पुकार बेथा जन्म गवाया मर जम्मे बारो बार ये जलता देके पाँच भाई साथ गुसरना सा सा दड़ाया सदा सच संयम रहना सब सच्चा है बोलता सब जपा जतरना लग जरासी फिर दे फिरे मैं साथ को मुक्त ना होई पर पंडा इजमोनि तक दूजे पाए पद कोई साथ को सब स्वर्णाया मैं सच्चे भरना कोई जो सच्चे लाए सो सच लगे मैं सच्ची कार करन तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे मैरहन नान पद सुखिए सच्चे नाम चन्न सिरा महला पंजमा जागो मुश्किल रात बने रोई कोई ना दे लागू है दुश्मना साग भी पाज खले

राव जो को दुबला ना पोकना पीर दमला पल्ले ना पावे ना को देवे तीर स्वार स्वार ना कोरी ना कि जो वे काज चित आवियो पावरम ता नेचल हो वे राज जा को चिंता बहुत बहुत देही व्या पेरोग रेटम पलटिया कदे हर कदे सोग गौन करे चौकुंट का करना बैसन सोए चित आवे उस पावरम तन मन शीतल होए काम क्रोध मोह बस किया कृपा लो बहंका प्यार चारे किरवे उठ आकिए होवा असंगार पोथी गीत कवित कदे ना करने तरिया चित आवे उस पावरम तन निमक सिमर तरिया सास मेत बेचार कबर विचरे तपे तपी सजोगियां तीर्थ गमन करे

जैसे जलते बुद्ध बुदाय उपजय बिन सैनी जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीर।

सुरमानंद पात कर आए चंद्र ब्रह्म मंगलन सुहाए सरसवान हो आहे बनो दागा सरस बसंत कमोदा अष्टभद्र मैं।

माता तरत महत दिवस रात दाई दाया खेलाए सगल जगत चंग्याईया बुरियाईया वाचे तरमा दूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिन्नी नाम ते आया।

गुरुमुख जन्म सहवारणिया गुरमुख दुख कदे न लगा शरीर गुरमुख होमै चूकै पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल न लागै गुरमुख सहज समावणिया गुरमुख नाम मिलै वड्याई गुरमुख गुण गावै सोभा पाई सदा आनंद रहै दिन राती गुरमुख शब्द सरा करावणिया गुरमुख अणदिन सब

मिल प्रीतम सुख पावणिया, जम जा गाती दूजा भाए कर लाए, नाव भूले देस जाए। कड़ी मोहत का लेखा लेवै, रति हो मासा तोल

संत चुग है नित गुरमुख होय, इसनान करे सदा दिन राती, हौ मैं मैल चुका बणिया, निर्मल हंसा प्रेम प्यार, हार मसार।

जात सत संयम सच कमावै गुरपुरै नाम त्यावणिया पी अड़ै धन भरम भुलाणी दूजा ला।

कौन सो मुक्ता, कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी, कौन सो भक्ता, कौन सो गृही, कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा, किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन टूटा, कौन कर्म कौन नेह कर्मा, कौन सो कहा कहाए जियो, कौन सो सुखिया, कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख, कौन वे मुखिया, किन बिद मिलिए, किन बिद बिछड़ै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जित धावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सो चाल जित पार भ्रम ध्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता, गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी, गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, होमै बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन टूटा, गुरमुख कर्म गुर

की हो सुहाओ। सर्व कल्याणा त्यत देन हार परसी गुर के पाओ। वार माज की तथा श्लोक महल्ला पहला। मलक मरी तथा चंद्रन हरा सोहिया की धुन गावनी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महल्ला पहला।

करे बौ रंगी कहो नानक जस लै भय कर पाल गुरपुरे ताके काटे जाल गौड़ी गुआरे री मोहला पांजवा तो कृपा ते मार्ग पाइए प्रभ कृपा ते नाम त्याइए प्रभ कृपा ते बंधन छूटै तो कृपा ते होमे टूटै तुम लावो तो लागा सेव हम ते कुछ न होवै देव रहाओ तुद भावे ता गावा बाणी तुद भावे ता सच बखाणी तुद भावे ता सत गुर मया सर्व सुखा प्रभ तेरी दया ज्योत भावे सो निर्मल कर्मा ज्योत भावे सो सच धर्मा सर्ब निधान गुण तुम ही पास तू साहब सेवक अरदास मंत्र निर्मल होए हर रंग सर्ब सुखा पावो सत संग नाम तेरे रहे मन राता इहो कल्याण नानक कर जाता गौड़ी गुआरे री मोहला पांजवा।

गुण गाओ, निमक निमक हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कतहुं जाइए, साध संगत वड भागी पाइए। आठ पैर जेहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकर आगाध। इहां उहां सदा सहेली, हर गुण गावत रसना मोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, ए रस राती बोर न छोडे। आन रस कस लवे न लाई, को नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी गुआर एरी मोहल्ला पांजवा, मन मंदर तन साजी बार। इसी मदे बात पार, इसी पीतर सुनियत साहो। कौन बपारी जाका, कौन बपारी जाका हुआ वसाहो। नाम रतन को ब्योहारी, अमृत भोजन करे आहारी। रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय, कौन सो जोगत जैत कर पी जय। पाए लगो तज मेरा तेरा, कौन सो जन जो सौदा जोरै। मैल साका कैन बिद पावे, कौन सो बिद जित पीतर बुलावे। तुंवड़ साहु जाके कोट बन जारे, कौन सुला दाता ले संचारे। खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया। कर

दो जोता छोड़न तैस स्यो मन रचना कहो गसाई मिलिए केह जो बिरज तैसो नेह रहाओ झूठ बात सा सच कर जाते सत होवन मन लगे ना राते बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ा पूठा बनना तोहां सिरां का खासम प्रभ सोए जस मेले नानक सो मुक्ता होए गोड़ी ग्वार रे मोहला पांजवा कलजुग में मिल आए संजोग जिचर आग्या तिचर भोगै भोग जले न पाइए राम स्नेही करत संजोग सती उठोई रहाओ देखा देखी मन हठ जल जाइए प्रे संग न पावे बहु जोन पवाइए सील संजम प्रे आग्या मान है सील संजम प्रे आग्या मान है तिस नारी को दुख ना जमान है को नानक जिन पिरयो परमेसर कर जानिया धन सदी दरगह परवानिया गौड़ी ग्वारेरी मोहला पांजवा हम धनवंत भागड़ सच नाहे हर गुण गावै सहज सुभाए रहाओ पियो दादे का खोल ठक जाना ता मेरा मन भया नदाना रतन लाल जाका कछु न मोल भय भंडार अकूट अतोल खावे खर्चे राल मिल पाई तोटन आवे वध दो जाई को

साजन है समिया तिस जन को कोका की कमिया जाकी प्रीत गोबिंद से लागी दुख दर्द भरमता का भागी रहाओ जाको रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो

तै सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख आनंद सोग नहीं बिया सो घर गुर नानक कह दिया गौड़ी मोहल्ला पांचवा कवन रूप तेरा आरादो कवन जो काय आले साधो कवन गुण जो तो जले गावो कवन बोल पार ब्रह्म रिझावो रहाओ कवन सो पूजा तेरी करो कवन सो बिद जित भाव जल तरो कवन रूप तप ज तपिया होए कवन सो नाम हो में मालक होए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल जिस कर कृपा सतगुर मिले दयाल तैसे ही गुण तिन ही प्रभ जाता जिसकी मान ले सुखदाता रहाओ दूजा गौड़ी मोहल्ला पांचवा आपन तन नहीं जाको गरबा राज मिलक नहीं आपन दरबा आपन नहीं काको लपटायो आपन नाम सत गुर ते पायो रहाओ सत बनता है आपन नहीं पाई अष्टमीत आप बाप न माई सोना रूपा तो फुन नहीं दाम हायवर गैवर आपन नहीं काम कहो नानक जो गुर भगत मिलाया तिसका सबके जिसका हर राया गौड़ी मोहल्ला पांचवा गुर के चरण ऊपर मेरे माथे ताते दुख मेरे सगले लाथे सतगुर अपने को कुरबानी आत्मचीन परम रंग मानी रहाओ चरण रेण गुर की मुख लागी अहमद तिन सगल त्यागी गुर का शब्द लगो मन मीठा पार ब्रह्म ताते मोह डीठा गुर सुखदाता गुर करतार जी प्राण नानक गुर आधार गौड़ी मोहल्ला पांचवा

पुरख परम पर देव तैसु पर मन कर तू आसा आ जगा जाका भर वासा जाके प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पांजवा मीत करे सोई हम माना मीत के कर दो कुशल समाना एका टेक मेरे मन चीता जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा यंतर जामे सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दास है तुम ठाकर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पांजवा जाको तुम पै सम्राथ अंगा ताको कछ नाही कलंगा माधो जाको है आस तुम्हारी ताको कछ नाही संसारी रहाओ जाके हृदय ठाकर होए जाको सहसा नाही कोय ताको सहसा नाही कोय जाको तुम दीनी प्रभ तीर ताके निकट न आवे पीर कोह नानक मैं सो गुर पाया पार ब्रह्म पूर्ण देखाया गौड़ी मोहल्ला पांजवा दलब दे पाई वडपा की नाम न जत जपे ते आत्म कहती मर न जाही जिना बिसरत राम नाम बिहून जीवन कौन काम रहाओ खात पीत खेलत हस्त बिस्थार कवन अर्थ मृतक सिंगार जो न सुने जस परमानंदा पस पंखी त्रिगत जोन ते मंदा कोह नानक गुर मंत्र दृढ़ाया केवल नामृद माहे समाया गौड़ी महला पांजवा काकी माई काको बाप नाम त्रीस त्रीक झूठे सब साक काहे को मूर्ख पख लाया मिल संजोग हुक्म तू आया रहाओ एका माटी एका जोत एको पवन कहा कौन रोत मेरा मेरा कर बिरला ही मरण हार यो जीरा नाही कौ नानक गुर खोले कपाट मुक्त पै बिन से भ्रम थाट गौड़ी महला पांजवा वडे वडे जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग कौन वड्डा माया वड्याई सो वड्डा जिन राम लेव लाई रहाओ भूमिया भूम ऊपर नित लुजै छोड़ चले त्रिसा नना त्रिसना नहीं बुझै कहो नानक तत् बिचारा बिन हर भजन नाही छुटकारा गौड़ी महला पांजवा पूरा मार्ग पूरा इसनान सब गज पूरा हृदय नाम पूरी रही जा पूरे राखी पार ब्रह्म के शरण जन ताकि रहाओ पूरा सुख पूरा संतोख पूरा तप पूर्ण राज जोग हर कै मार्ग पतत पनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हर सद वसे हदूरा को नानक मेरा सतगुर पूरा गौड़ी मोहल्ला पांजवा संत की धूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन मरण ते छोट संत का दरस पूर्ण इसनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत कै संग मिटिया अहंकार दृष्टियावे सब एक अंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय ले सांचा को नानक जाका पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चन गौड़ी महला पांजवा हर गुण जापत कमल परगास हर सिमरत त्रास सब नास साब मत पूरी जित हर गुण गावे वड़े पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाइए निध नामा साध संग पूर्ण सब कामा हर की भगत जन परवान गुर कृपा ते नाम वखाण को नानक जो जन परवान जाके हृदय वसे भगवान गौड़ी मोहल्ला पांजवा एक सो जाका मन राता विसरी तिसे पराई ताता बिन गोबिंद ना दिसे कोई करन करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोलै सोजन एत्युद कते ना डोलै जाके हर तन सो सच शाह गुर पूरे कर दीनो वसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पांजवा नाम भगत कैन प्राण आधार नामो तन नामो व्यवहार नाम वडाई जन सोभा पाए कर कृपा जसे आप दवाई रहाओ राम नाम भगत कै सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को धार सास सास जन नाम समार कोह नानक जस पूरा पहाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी मोहल्ला पांजवा संत प्रसाद हर नाम त्याया तब ते तवत मन त्रिपताया सुख विश्राम पाया गुण गाए सन मिटिया मेरी हती बलाए रहाओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमन ते मीटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक सरण आयो ऊच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द भरम पौ नसया करण हर नानक मन बसया गौड़ी मोहला पांजवा
कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकर कह मार्ग धावो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का दर्शन पेख प्रभ अविनाशी मन में लेख सुन कीर्तन साध पै जाए जन मरण की त्रास मटाए चरण कमठा करे और तहार दुलाब दे नानक निस्तार गौड़ी मोहल्ला पांजवा जाको अपनी कृपा तार सोजन रसना नाम उचार हर बिसरत सहसा दुख ब्यापै सिमरत नाम भरम पौ भागै रहाओ हर कीर्तन सुनै हर कीर्तन गावै तिस जन दुख निकट नहीं आवै हर की टहल करत जन सोहै ताको माया अगन ना पोहै मन तन मुखर नाम दयाल नानक तजी अले अवर जंजाल गौड़ी मोहल्ला पांजवा छाड़ सियानप बहु चतराई गुरपुरे की टेक टिकाई दुख बिनसे सुख हर गुण गाए गुरपुरा भेटिया लिव लाए रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र मिटे वसूरे उतरी चिंत अनद पै गुर मिलत कृपाल कर कृपा काटे जम जाल कहो नानक गुरपुरा पाया ताते बोर न ब्यापे माया गौड़ी मोहल्ला पांजवा राख लिया गुरपुरे आप मन मको लागो संताप गुरु गुरु जप मीत हमारे मुख उजल होवे दरबारे रहाओ गुर के चरण हिरदे वसाए दुख दुश्मन तेरी हतै बलाए गुर का शव तेरा संग सहाई दयाल पै सगले जी पहाई गुरपुरे जब कृपा करी भणत नानक मेरी पूरी परी गौड़ी मोहल्ला पांजवा अनकर साखाए जैसे ढोर मुँह की जेवरी बाध्यो चोर मृतक दे साध संग बिहूना आवत जात जोनी दुख खीना रहाओ अनक बदर सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम निफल मानक जपे नहीं नाम को नानक जा को पह दयाला साध संग मिल भजे गोपाला गौड़ी मोहल्ला पांजवा कल कलेस गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे पै बिनसे निरपो हर त्याया साध संग हर के गुण गाया रहाओ चरण कवल रिधि अंतर तारे अगन सागर गुर पार उतारे बूढ़ जात पूरे गुर काढ़े जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक तिस गुर बलहारी जिस भेट गद पई हमारी गौड़ी मोहल्ला पांजवा साध संगता की सारणी परो मन तने अपना आगै धरो अमृत ना पीवो मेरे भाई सिमर सिमर सब तप्त बुझाई रहाओ ताज अभिमान जन मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो साध साध प्रभ मने संभाले सो धन सांचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जस मातक भाग को नानक ताके चरणी लाग गौड़ी मोहल्ला पांजवा सूके हरे किए खैन माहे अमृत द्रैट सांच जीवाए काटे काट पूरे गुरदेव सेव को दीनी अपनी सेव रहाओ मिट गई चैंत पुनी मन आसा करी दया सत गुर गुण तासा दुख नाठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फरमाए ऐच पुनी पूरे गुर मिले नानक ते जन सुफल फले गौड़ी मोहल्ला पांजवा ताप गए पाई प्रभ शांत शीतल पै कीनी प्रभ दात प्रभ कृपा ते पै सहेले जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ सिमरत सिमर प्रभ का नाओ सगल रोका बिनसिया थाओ सहस पाए बोले हर बाणी आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी दुख दर्द जम नेड़ न आवै ओ नानक जो हर गुण गावे गौड़ी मोहल्ला पांजवा भले दिनस भले संजोग जित भेटे पार ब्रह्म निरजोग ओह बेला को हों बल जाओ जित मेरा मन जपे हर नाओ रहाओ सफल मूर्त सफल ओह करी जित रसना उचरे हर हरी सफल ओ माथा संत नमस्कार स चरण पनीत चले हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित भेटे साधु के चरण गौड़ी मोहल्ला पांजवा गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे बिन भगवंत नाही अन कोए मारे राख एको सोए रहाओ गुर के चरण दे और तार अगन सागर जा पुत्रे पार गुर मूल सो लाए ध्यान इहां हुआ पावे मान सगल त्याग गुर सरणी आया मिटेंदे से नानक सुख पाया गौड़ी मोहल्ला पांजवा जिस सिमर दुख सब जाए नाम रतन वसै मन आए जप मन मेरे गोबिंद की बाणी साधु जन राम रसन वखाणी रहाओ एक सबन नाही दूजा कोए जाके दृढ़ सदा सुख होए साजन मीत सखा कर एक हर हर अखर मन में लेख रव रहा सरबत स्वामी गुण गावे नानके अंतर जामी गौड़ी मोहल्ला पांजवा
ਭੈ ਮੈਂ ਰਚਿਓ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ ਤਿਸ ਪੋ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਪੋ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ਜੋ ਤਦ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਨਾ ਰਹਾਉ ਸੋ ਗਰਖ ਮੈਂ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਮਹਾ ਵਿਆਪੇ ਮਾਇਆ ਸੇ ਸੀਤਲ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਰਾਖ ਲੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਣ ਹਾਰਾ ਕੋ ਨਾਨਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ।